घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325 65 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणी।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चलिए अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, भजन होगा पंडित जय शंकर जी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन पेश की गई पंडित जय शंकर जी की आवाज में अभी आपने सुना। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा विपिन की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन प्रणव की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। एक भजन जो हमारे बहुत से सुनने वालों भी पसंद करते हैं।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर सा भजन की ओर हम आपको ले

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आप जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

एक बार फिर से हमारी सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड आप हर एक को बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस

उनका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चुन का यही मतलब होता है कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सिर्फ पुरानी नगमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। बहुत से सुनने वालों है जो इंतजार कर रहे हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी नगमे। तो चले सबसे पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। तो चले आज शनिचर शनिवार की खास सुबह के प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत। पद्मश्री मोहम्मद।

मोहम्मद रफी है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। पुरानी फिल्म प्रोफेसर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मुकेश और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुन वालों की सेवा में। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: एक सूरज है जिसे दहन तक गया, कितनी रोशनी थी और कितना अंधेरा हो गया।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी फिल्में गाने नखमे आप हर एक के लिए पेश किया जा रहा है। चले लता जी की आवाज में अबकी बार ये गीत पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और उसी वेबसाइट की जरिए आप स्टूडियो की ओर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई, देखा है तेरी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। खूबसूरत प्यार भरी नख में आज की इस प्रोग्राम में

मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था प्यार किए जा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। तो चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

हंसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। ये गाना जो है काफी पुरानी फिल्म का है, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में।

काफी पुरानी है फिल्म का गीत, बस प्रोग्राम में पेश की गए। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में एक फिल्म रागनी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मोहम्मद रफी और गीत आदत प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में, और फिल्म का नाम है रफू चक।

शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

0: अपन तन मन।
1: आज एक साथ महके है दो गुलाब,
2: एक डोर में होते हैं दो मोती,
1: एक साथ धड़के हैं

रेडियो SBS की जरिए तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। बहुत सी सुनने वालों है जो आज शनिचर शनिवार का खास प्रोग्राम को सुनते हैं सभी को वेलकम कहा जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रोटरडम शहर के अंदर राज भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और राज ये खास गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

क्या ना प्यार जिसमें हो, साथ अगर हो साथी दिल का मजा सफर में है। जिंदगी वो क्या ना प्यार जिसमें हो, साथ अगर हो साथी दिल का मजा सफर में।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई, और खासतौर पर रोटरडम शहर का रहने वाला राज का मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। राज आपको शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम शहर के अंदर में बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आशा जी की आवाज में बस मांग किया है। फिल्म फूल और पत्थर उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है, जिंदगी से प्यार करना सीख ले। रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में फूल और पत्थर फिल्म का गीत पेश की गई और खास तौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शीला आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, सुनने वालों ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं, बस प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग किया है। राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला है।

खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाई भाई का गीत अभी आपने सुना। उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में फिल्म खानदान से बस पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में और रोटरडम शहर के अंदर में सबीना सबीना भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और गाना मांग किया है लता जी की आवाज में। फिल्म खानदान से पेश किया जा रहा है ये मुलाकात एक बहाना है।

जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई पुरानी फिल्म खानदान, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। ये मुलाकात एक बहाना है। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों आपसे निवेदन है, गुजारिश है, स्टूडियो में अब मत तार करने के लिए जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे, या तो ऐप मत कीजिए गाना मांग करने के लिए, इसलिए कि तकरीबन 11 बजे तक ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और अभी काफ़ी सुनने वालों की मांगी हुई गाना हमें पेश करना है। तो आपसे गुजारिश है कि स्टूडियो में मत तार करने के लिए, मत ऐप करने के लिए जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे। मॉरिशियस से खास तौर पर दूषण जिंगरी एक गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। मोहब्बत जिंदगी है, महेंद्र कपूर और आशा प्रोग्राम में। मॉरिशियस का रहने वाला दूषण जिंगरी ये खास गाना मांग किया है। तुम सबसे हसीन हो दिलरुबा।

मोहब्बत जिंदगी है फिल्म का नाम। महेंद्र कपूर और हाशिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। मॉरिशियस का रहने वाला दूषण जिंगरे ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से बस पेश की गए। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम मॉरिशियस में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तुरंत सुनने वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म जुगनू, उसी फिल्म का एक गाना पेश होगा। 1973 का फिल्म किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में गाना आप सुनेंगे। रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय भी तैयार किया है और ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है किशोर एंड लता।

Jugno, film Kishore en Letta J.K. Avasme. Rotterdam, Shahar ki rehne wali Gita Roy ki mangi hui gana bus program mein pesh ki gayi. Gita Roy ki mangi hui gana bus program mein pesh ki gayi. शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मौतकार में इस वक्त विम धनिका सिंह भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उत्तराखंड शहर का रहने वाला है और हमारा प्रोग्राम मौतकार में इस वक्त सुनते हैं विम धनिका सिंह। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम मोटोकार में जरूर सुनते ही रहना। और खबर किया है कि अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में DAB प्लस द्वारा हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है। लिम्बर्ग से इरेना भीतार किया है स्टूडियो की ओर और एक गाना मांग किया है। आज के प्रोग्राम में तलत जी की आवाज में गाना बस पेश किया जा रहा है। आशियाना फिल्म का गीत आप सुनते ही रहना। लिम्बर्ग की रहने वाली इरेना की मांगी हुई गाना।

द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना पेश की गए। आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लिम्बोरक से है इरेना, ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। लिम्बोरक से इरेना की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शुक्रिया आपकी तार के लिए और एक खूबसूरत और सुहाना दिन वीकेंड के साथ बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी अब की बार प्रोग्राम में होगा। फिल्म का नाम अप्रैल फूल। रोटरडम शहर की रहने वाली राधा, राधा ने तार किया है स्टूडियो की ओर और ये गाना की मांग किया है। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी, अप्रैल फूल फिल्म का नाम। रोटरडम की रहने वाली राधा की मांगी हुई गाना।

सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रोटरडम शहर की रहने वाली राधा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आसरो उम्मीद है राधा अपनी मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन और एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। लता जी की आवाज में गाना पेश होगा दिल से मिले दिल फिल्म का नाम है और उसी फिल्म का खास गाना उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना ने मांग किया है स्पेशल गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है सोमवार के लिए पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में।

लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए, दिल से मिले दिल, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। उत्तराखंड शहर के रहने वाली खासतौर पर सपना स्पेशल ये गाना मांग किया सोमवान के लिए, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश होगा और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना भी पेश किया जा रहा है। डेन हाग शहर के रहने वाले हैंक और सिंथिया एक दूसरे के लिए दिल जान से प्यार और मोहब्बत के साथ ये गाना को मांग किया है मोहम्मद रफी और लता जी की।

0: van die film Wapas ka geet pesh kiya hai. Marhoom Mohammad Rafi aur Lata Mangeshkar ki awaaz mein ye gaana bhi aapne suna ki ek tera saath hame do jahan se bhi pyara hai. Den Haag shahar ke rehne wale Hank aur Cynthia ek dooje ke liye dil jaan se pyar aur mohabbat ke saath ye gaana bas program mein pesh kiya. आप लोगों के तार के लिए ऐप के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और शुभ दिन शुभ विज्ञान पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना. सुनने वालों यहाँ तक पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई. कल रविवार है, कल दिन में 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से जरूर आप सुनते ही रहना फिर से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो तकरीबन 11 बजे तक पेश किया जाएगी.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

पूरे अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

कमल खान और स्नेहा पद की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। चले हम आपको ले चलते हैं रूप कुमार राठौर की ओर, मिस्टर सिंह एंड मिसेस मेहता फिल्म का।

रूप कुमार राठौर की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

SBS के जरिए ये गाना उदित नारायण और अलका जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.net उसी वेबसाइट के जरिए हमारा ये प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं।

शनिचर शनिवार का दिन है और यहाँ से लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और लोकल टाइम का प्रोग्राम तकरीबन 2 बजे तक जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उबर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। आश्रो भी देखिए, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गए शनिवार का दिन लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 030-262-6611। चले प्रोग्राम में लकी सिंह की ओर है।

जिसमें ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

आसरों मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए हैं। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में चले मिलकर ये गाना।

और रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खासतौर पर मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अक्सर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: में आज के ये प्रोग्राम भी अभी आपने सुना। सर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। और गाना आप सुनेंगे अमित की आवाज में,
1: मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है तो अभी।

में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार सागर मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश

सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त सुनते हैं। सभी को वेलकम कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक बार फिर से उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस का।

राणा का गाया हुआ गाना उमर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। Teams Drive 237 शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए आज की इस लोकल टाइम के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में लोकल टाइम के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं और वो भी खास तौर पर विम डमरी की ओर।

भीम दमरी और साथियों की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बैठेगी। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना।

हीरा मुझे मिल जाए गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं था आपका खिदमत

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुली रामलाल दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wil je reageren? Kan het altijd? Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

0: लंका खूब ये हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

भी सिर्फ विरा तू भी सिर्फ फिरी गजोंगा दोर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजोंगा दोर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। इस वसंग दुर कुमार सानू है, बस आउट ऑफ फिल्म दिलवाले। हाँ मतलब फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान, वसंग दुर जावेद अली कौम तू जो मिला।

मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। KK की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।

0: आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरती बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में। फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खुशहदुर कुमार सानू एंड अलका याचनिक एंड क्वामा द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

0: नजर से।
1: मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से, दिल की नजर से। और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्योंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी विद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में। आप सुनिए सावन में।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ें हैं हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।